0: अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक में है।
1: ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक में।